0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओडोडो नमोनी यू ये कारमो क्लोना चोली को दे पलेजी जो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: द ब्रोज़ बिट्स डॉन मिलियंस एंटरटेनमेंट आई एम माफिनो कनेक्ट आई एम अ मिस बॉय ट्रैक निगा जे

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: अबुनी बाता
3: आ अबीनु कांपिया वो भी मारुनी ये ने अमे वेर वॉके अबुमिनो वेर वेर वॉक अमे उन्होंने रागवा
2: रब जागवा
3: रागवा

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Radio. Commander Mixola.
3: Yeah.